0: गड़िए खात पढ़िए जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते अर्जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हो मैं चकड़ा चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताक।

कूड़ कूड़ देखो लगा उसने करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ बेपू नानक वखाने।

आत्मे शरीर का एक रथ एक रथवाह जुग जुग फेर उठा यह ज्ञान विचता है सजुग रथ संतो का धर्म ग्रथवाह।

मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दुइ धोती वस्त्र कपाटंग।

गऊ ब्राह्मण को कर लाभ हो गो बर्तन न जा तो टिटका जप माली तान लिछा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बांस संजन त्रुका पाई।

बच्चे का भौ ना ही भौ मतलब डर, जिन्हां दे अंदर उस सच्चे दा डर नहीं, नाम ना करह प्यार जिहड़ा जिन्हां दे अंदर उहदी बंदगी उहदा चिंतन भी नहीं, नानक तिन स्यों क्या कीचै दोस्ती। कहिंदे हे नानक जी ओ उहनां नाल की मित्रता करनी जे आप भुलाए करतार, जिन्हां नूं उस करते ने आप ही भुलाया होया उहनां नाल मित्रता कादी। फिर हुण एक बचन होर पढ़ो बाणी दा। सतगुरु कहिंदे मनमुखां केरी दोस्ती, जिहड़ी मनमुखां नाल मनमुख स्यों कर दोस्ती, सुख के पुछै मित। गुरु अमरदास साहब कहिंदे दोस्ती तो मनमुख नाल करी फिरदा है, फिर सुख कित्थों पालदा है। मनमुख स्यों कर दोस्ती, मनमुख नाल दोस्ती करके सुख के पुछै मित। कहिंदे सुख कित्थों पाल रहे हां, कित्थों लभ रहे हां। जे सुख चाहिदा फिर एक कर्म कर ला, गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। आ कर्म अपना ला, गुरमुख नाल दोस्ती कर ला, गुरु नाल चित जोड़ ला, सुख ही सुख होएगा। मन मनमुख नाल दोस्ती करेगा कहिंदे सुख लभ्या भी नहीं लभना। जिवें गुरु बाबा जी बाणी च जिक्र करदिआं कह दिंदे ना, कहिंदे मनमुखां कोल ना मन अपने गुरु कोलों अपने प्यारे कोलों टुट्टिआं होइआं दी दशा इदां दी है, उहनां नूं ते सुपने विच भी सुख नहीं मिलदा, सुपने विच भी सुख नहीं मिलिआ। जिहड़े उहदे तों विछड़ गए, उहदे तों टुट गए, उहदे तों दूर हो गए, मनमुख नाल दोस्ती दा नतीजा यही है सुख लभ्या भी नहीं लभदा। दोस्ती करनी है गुरमुखां नाल करो, रब्बी प्यारियां नाल जदों बैठांगे रब दीआं बातां पावांगे। चित लाउणा है ते गुरु बाबा जी कहिंदे अपना चित फिर अपने गुरु नाल जोड़, संसार नाल नहीं। भरोसा रखना है ते गुरु ते रख, संसार ते नहीं। विश्वास करना है गुरु ते कर, मित्रता करनी ते गुरमुख नाल कर। कहिंदे गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। अपना चित गुरु नाल जोड़ ला। नानक तिन तिस है ना जेडे जीव, नानक तिन स्यों क्या कीचै दोस्ती, जे आप भुलाए, जिन्हां नूं आप उस करते ने भुलाया।

एक कई सदा एक तय एक दे रंग विच ना एक तय रंग रहे एक दे प्रेम विच रहिंदे ने तिन कह हाउ सद बलिहारे जाओ कहिंदे जिहड़े एक अकाल पुरख दे प्रेम च रहिंदे मैं उन्हां तों हमेशा बलिहारे जाना तन मन धन अर्पी तिन कौ कहिंदे उन्हां नूं मैं अपना सब कुछ अर्पण करदा निव निव लागों पाए और मैं उन्हां दे चरणां दे विच निव निव के नमस्कार कर

फिर जी संपूर्णता की सतगुरु जी ने शब्द दी, नानक गुर विटों वारिया, हे नानक जीओ मैं गुरु तो कुर्बान जाना, जिन हर नाम दिया, केड़े गुरु तो, जिन जिसने हर नाम दिया रब दी बंदगी बख्शी, मेरे मन की आस पुराई, जिन्हें मेरे मन की आस पूरी करती। हुण मन की आस पूरी करती मिलिया की है, हर नाम दिया, मतलब मन की आस की सी, मैनू रब का नाम मिल जाए, यही आस सी ना। गुरु ने त्रुट के आस पूरी करती, आस पूरी हुई मिलिया की, हर नाम रब का नाम। हुण सतगुरु कोल आके साडे मनां दी आस की है, सवाल यह है, गुरु दे सुभा दा प्रगटावा ते गुरु कर रहे ने, कहिंदे गुरु ते ऐसा है जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, गुरु ते ऐसा है कहिंदे मैनू हर नाम दी सोझी बख्शद है, गुरु ते ऐसा है मैं उदे कोलों आके जो मंगांगा मिल जाएगा, हुण मिलिया मैनू की है ते गुरु कोलों मंगिया मैं की है। तां गुरु रामदास पातशाह कहिंदे मैं गुरु कोलों मंगिया हर नाम, गुरु ने त्रुट के मेरी झोली च पाता। असी गुरु कोलों की मंगिया है, जो असी मंगिया गुरु सानू भी बख्श रहा है, ते फिर ये कहण च कोई गुरेज नहीं, जे अजे तक साडे कोल बंदगी नहीं है इहदा मतलब असी गुरु कोलों अजे बंदगी मंगी नहीं। जे आपां बंदगी मंगदे ते की गुरु सानू ना बंदगी बख्श दे, साडी झोली विच वी बंदगी पाउंदे। असी गुरु कोलों हरी नाम मंगिया ही नहीं है, असी गुरु कोलों मंगिया ही तन है, असी गुरु कोलों मंगी हुई संसारक वस्तुआं ने, पदार्थ ने, रब ते मंगिया ही नहीं है। गुरु कोलों गुरु नूं ते कदे मंगिया ही नहीं है, गुरु कोलों परमेश्वर नूं ते कदे मंगिया ही नहीं है, गुरु कोलों रब की बंदगी ते कदे मंगी नहीं है। जिदन मन करके गुरु कोलों रब की बंदगी मंग लांगे, उदन झोली विच बंदगी की दात पाएगी। हुण ते झोली उन्हां पदार्थां नाल ही भरी है जिहड़े अहीं रोज गुरु कोल आ के तरले कर करके मंगदे हां, वी आ वी बख्श दे, आ वी बख्श दे, गुरु दे ही जांदा है। गुरु अपने सुभा की पालना करता है, गुरु झोलियां भरदा है, सिख नूं मंगना नहीं आउंदा। गुरु ते झोलियां भरदा है, सानू मंगना नहीं आउंदा। जिद्दण सानू मंगण दी जाच आ गई ना, चेता रखियो गुरु उद्दण भी त्रुट के साडी झोली भरेगा, उदन भी गुरु प्रसन्न होके साडियां झोलियां भरनगे। जिस दिन गुरु कोलों सानू पदार्थ तो बिना, पदार्थां वस्तुआं तो बिना जिदन गुरु नू मंगण दी जाच आ गई, उदन फिर गुरु आप मिलेगा, फिर पदार्थां वस्तुआं सारियां छोटियां लगन लग जाणगियां। इसलिए सतगुरु कोलों जदों मंगो वस्तुआं पदार्थ, मैं ये नहीं कहिंदा कि ना मंगो, मंगो वस्तुआं ते पदार्थ गुरु कोलों मंगो, पर वस्तुआं पदार्थां दे नाल नाल किते झोली अड के गुरु कोलों गुरु नूं भी मंग लो, क्योंकि जिद्दण गुरु मिल गए उद्दण वस्तुआं ते पदार्थां दी लालसा मुक जाएगी। सतगुरु कृपा करन, मालक अगे बेनतियां करदे रहा करो।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

मैं कोई न जाने उचे ते सगल सामग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं त्रेथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए।

आप जियां दे प्रेम दे विच बतीत करवावना, आप जियां दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है।

तरत महत दिवस रा दोईदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का।

दुख दारू सुख रोग प्याजा सुख कामना हुई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना हुई बलिहारी कुदरत वस्या त्राल न जाय लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर है तू सच्चा साहिब।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਵੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਚ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੇਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤ ਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੁੰਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ
मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगमागम पर सब त्या वहीं तुद जी हर सच्चे सृजन हर सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते अब हो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू बार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आक बखाना जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवहीं हर ते आवहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भए जैनो हर ते आया जी तेनो टूटी जमकी फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी तिनका भौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तब ताप ही जब ही बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत वरे जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहें
तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेर, विजोग मिल विछड़या संजोगी में, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर्व रड़ाए भाईले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबी अरे, मान एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणमत नानक तिन की शरणा, जैन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जब तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रख हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती जाओ पाई, हमरी क्रोहा दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दे मुहि बचाब हो, सुखी बसे मोरो पर बारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिय, सबैरन को आय संगरिय, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छा कोई अवरना थे आऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिहो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुमह पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो,
वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तही हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट गे अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ बड़ की जन्ने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आ कर्क करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे तिन रालम, जानत बेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीन अनाद असंभ, ताका मोड़े उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कृपाण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नहि पिब, आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, किह विध सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंड जे रसे तजकीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, आ जुगा स्वरूप स्वयं भव, अभ रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे आस तुझे तब शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे, पुरख जान पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरिओ, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसती ताहे ओबारा, जिन नारे नाम तेहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दय ले हो ओवारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई,
दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जावते तुमरे, तबते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक गहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपीद कहें हम एक न जान्यो, श्रीअस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो, सब तो हे बखाने दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, बाहीं गए की लाज अस गोविंदास तोहार, सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, बाही गए की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद, इक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता वाया सह सीती मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया, शब्द तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, इमन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना, सुना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सच्चे साहेबा क्या ना ही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, ना मन वसावाए नाम जिनके मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन है वसया, जैनों इच्छा सब बचाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कहे नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंशब तित कर सुभाग्य, कर सुभाग्य शब्द वाजे कला जित करता रिया, पंच दू तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे, कहे नानक तैं सुख होआ,
तित घर अन्न हद बजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए आ उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पहुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैं नौ जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस भया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पाठ पढ़े आओ और वेद विचारे आओ निवल पयंगम सद्दे पंच जनास्यो संगना छुटकयाओ अधिक अहमद बांधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई।

हरे दिजय बुद्ध बविका राहौ मौन पयौ करपाती रहौ नगन फिरौ बन माही तरतीरत सब तरती प्रमेया दुविधा छुटके नाही मन कामना तीरत जाए बसया सिर कर बत तराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहुविद दान दातारा अनबस्तर पूम बहु अर्पय नह मिले हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन डंडोत खटकर मारत रहता हो करत बंदन में परेया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहेया फड़ी आर जा फिर फिर जन्मे हर स्यों संगना गहेया राज लीला राजन की रचना

नरक कोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै कर्मा कहो नानक तिस पयो परापत, जिस पूर्व लिखे का लहिना तेरो सेवक एह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन रत्ता। हर कीरत साध संगत है,

प्राप्त जिस पुर लिखे का नहिना तेरो सेवक ए रंग मत भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन रत्ता रहाओ दूजा।

है माणिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न बिना

चेते आवे। चेते आवण का सदका सर्वस कोए, जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत।

कर्ता पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सैव अंगुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत

बाद जय कर कीर्ता किए करते कावे विचारू तित कर गावो सोय लास व्रेओ सजन हारो तुम गावो मेरे नृपौ का सोय लाओ अरियत सोय लैसदा सुखोय रहाओ नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवन हार त्रिदान कीमत ना पवैत सुदा ते कमण समार

जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी तेरी जीव काल ते बचा तिन तरियो समुंदर रुदर खिन एक मह जल हर बिंब जुगत।

सैन कोट सैन संग सोभ कहत माज शोध जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द

पीत बसन कुंद दस पीत बसन कुंद दसन प्रिय सैत कंठ माल मुकर सीत मोर पंख चाहे जियो बे वजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल।

साध संग रत जियो देह गेह त्रया स्नेह चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार हिये तार

आपे हस आप ही चितव, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमण, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख

थल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत मीठे जाके बचना। मानह ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल

सत संगत सेती मन खचना, किया खेल बड मेल तमासा, वाहा गुरु तेरी सब रचना।

तनंत लाटू मधानियन गाह पंकी पौद्या लैन न सा सूए चाड़ पवाइये जंत नानक पौद्या गणतनंत बंदन।

जिन करता कर ना किया चिंता पिकरनीता, सो करता चिंता करे जिन पाय जग, जिस त्योहारी स्वस्थ तिसनी वाहने पग, नानक सचे नाम बिन क्या टिका।